होंगे वेरी रसकलांग वाही कुर भी त्यबी हूं तिमन रसकलांग दुआ खुराश तिमन रसकलांग त्यबी होंगे दुआ इजाब खुरवा हुशी में हम कशर तिमन रसकलांग दुआ खुम अड़खुम खुरमा कि बुरवेर गन्न मी हूं दन्नाश निकम हो रे निकमित वेगम वाह एवरे नरक वन्ना थी।

ए फोतु के आयत तफसील खुद वाफावा फोते के अरबी बहुवा कुरान गे गुतगे एई एखं दन्ना भय खट्ठते।

0: దీని హేలం తెరికం ఇతరు కొద్దని నువ్వు మెగాహర్ట్స్ దీని గాడు
1: ಹಿಮಬೇ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತೊಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹಕ ಬಲಿ ಫೆತುರುದಾಣೆ ಮುದ್ದತಕೀ ಕೊಬ
2: ಬಿಹಿನೆಗುಮ್ಗೆ ಹತರು ದುವ ಸ್ಕೂರಿಂಗ್ ಬಿಹಿನೆಗುಮ ಫಹು ಹತರು ದುವಹ ಹಮೆಯ ಬಲಿ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಮೀಹಾಗೆ ಫರಾತೊಂ ಎಹೆಂ ಮಿಹುಣ ಬಲಿ ಫೆತುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತೋವೆ
3: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
4: ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮನ್ ಖಾನ ಯುಮಿನು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ ಯೌಮಿಲ್ ಆಖಿರ್ ಫಲ್ ಯುಕ್ರಿಮ್ ಲೈಫಹ್ মানেই আল্লাহ শাহ কিয়ামে দুহং ইমাম ওয়া মিহা ফহে এনাগে মেহমানায় খামে হিতাশ
1: মেহার কাটি মেন্দম গালিবে একে জহি মি দিন কেডো
5: ই আশার হরম মতেগে উমর ফরায় খাস করে ফাওয়া প্রোগ্রামে মে প্রোগ্রাম গা আশার হরম দশগে কুড়কু দিনা নগলে আডা বাহক হরম একশি গেমবে
6: ಸೀದಾ ಮಗು